0: धन्यवाद जी।
1: मैं अंत दे विच दुआबा रेडियो दे तीवें कवि दरबार दे विच पेश हुए सारे कवियां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां ने अपने कीमती समयां दे विचों समां कढ के साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां नूं नवाजिया ते आस करदे हाँ कि सदा ही वो इसे तरह सानूं सहयोग दिंदे रहणगे ते अंत दे विच हरवंश सिंह वालों एक बार फिर सारे श्रोतियां नूं ते शायर दोस्तां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।

जैसे जल और पवन, ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: है। शुक्रिया जी।
1: सत्यो हफ्ता भरी का महफल दे विच हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी दे नवें उभर दे शायर तलविंदर शेरगिल जी नाल करवाउण जा रहे हां। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने। इहदे नाल दी नाल उहनां दे इक लिखे हुए गीत पंजाब सिया नूं साडे गायक कृष्ण ही उन्हें गाया है, जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ते इहो जे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंझे निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां। जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां। तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां, तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां। असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां, असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां। कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया, कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया। असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां, असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां। किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता, किसे वी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता। जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां, जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां। मिले वरदान ही कारण असाडी मौत देने, मिले वरदान ही कारण असाडी मौत देने। खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां, खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां।
1: ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਦੀਪ ਹਸਰਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤਰ ਗਿਆ,